अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: On Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: Every Monday from 10 to 11 a.m. Join the Urban Cube live with Shamiza Rashid. Creative conversations around arts, lifestyle and culture. Hear powerful voices, discover new visions and experience diverse cultural expressions. Meet inspiring charitable pioneers making a difference locally, nationally. The Urban Cube live, where culture, creativity and community come together. Every Monday, 10 till 11 a.m. The Urban Cube. Voices, visions, cultural expressions.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.

इब्राहिम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की, और अब ये नबी और उसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हों।

0: उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जबान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती।
1: इसका मतलब अगरचे ये भी हो सकता है कि वो किताब इलाही के माने में तहरीफ करते हैं या अल्फाज का उलट फेर करके कुछ से कुछ मतलब निकालते हैं, लेकिन इसका असल मतलब यह है कि वो किताब को पढ़ते हुए किसी खास लफ्ज या फिक्रे को जो उनके मफाद या उनके खुद साख्ता अकायद व नजरियात के खिलाफ पढ़ता हो जबान की गर्दिश से कुछ का कुछ बना देते हैं। उसकी नजीरें कुरान को मानने वाले अहले किताब में भी मफकूद नहीं है। मसलन बाज लोग जो नबी की बशरियत के मुनकर हैं, आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम में इन्नमा को इन्ना मा पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा यूं करते हैं कि ए नबी कह दो कि तहकीक नहीं हूं मैं बशर तुम जैसा।

जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8। फ्रॉम द स्टूडियो

0: ये बड़ी प्यारी मिसाल है और ये ज़रा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं ये बात आपके सामने वाज़े तरीके से पेश कर सकूँ। ये हैं दो आयात, दोनों मदनी आयात हैं, एक आले इमरान से है और एक सूरह हदीद से है, और तकरीबन बात दोनों में एक ही हो रही है। वसारिउ इला मग़फिरतिम मिन रब्बिकुम, जल्दी करो एक मग़फिरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है, अपने रब से आने वाली मग़फिरत की तरफ जल्दी करो। वह जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो। अर्दुहा समावातु वल अर्द, जिसका साइज आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आपको मालूम होगा आसमान कितने हैं, सात आसमान। सात नहीं कहा लेकिन समझ में आ जाती है बात, कहे बगैर सात आसमानों की बात हो रही है, जन्नत के की वसत की बात हो रही है। ऐसी जन्नत की तरफ भागो जिसकी वसत कितनी है, सातों आसमान और ज़मीन के बराबर। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। ठीक है जी, ये है आले इमरान की आयत, मुख्तसर सा तर्जुमा। अब आते हैं हदीद में, तकरीबन वही बात लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। सारीउ से शुरू नहीं हो रही बात, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पे। क्या कहा है अल्लाह ताला ने, साबिकू, सारीउ नहीं कहा, साबिकू कहा है, सबकत ले जाओ एक दूसरे से, एक दूसरे से रेस लगाओ, दौड़ लगाओ। पिछली दफ़ा क्या कहा था, जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरे में कहा क्या कहा है, सबकत ले जाओ, दौड़ करो, दौड़ लगाओ। पहला फ़र्क, देखते हैं कोई और फ़र्क होंगे कि नहीं। इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम, जैसे पहले था, किसकी तरफ दौड़ लगाओ, ऐसी माफ़ी की तरफ, ऐसी मग़फिरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है। वह जन्नत, और ऐसी जन्नत की तरफ, अर्दुहा, जिसकी वसत, जिसका साइज, का अर्द समाई वल अर्द, इसकी वसत तकरीबन, अब मैं तर्जुमा गलत तर्जुमा पहले करूँगा, इसकी वसत तकरीबन आसमान और ज़मीन की जैसी है। आसमान और ज़मीन, पिछली दफ़ा क्या कहा था, सारे आसमानों और ज़मीन की बात थी ना। अब कहा है असमा, असमा वाहिद है या जमा है, जमा है। और एक और फ़र्क भी है, पहली दफ़ा कहा था इसका साइज सातों आसमान के बराबर है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब बात कह दी, इसका साइज तकरीबन उसकी तरह है, किसकी तरह है, आसमान और ज़मीन के बराबर। अब बात अब समझ नहीं आ रही, अगर सात आसमान के बराबर है तो तकरीबन एक आसमान और ज़मीन के बराबर कैसे है, कुछ बात कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा, आखिर में कहा था उइद्दत लिलमुत्तकीन, पहली दफ़ा किसके लिए तैयार की गई है जन्नत, तकवे वालों के लिए। ठीक है, यहाँ कहा है उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, ख़ास इनाम है। फ़ज़ल कहते हैं जो इजाफ़ी चीज़ होती है, जो आपने उजरत में कमाई नहीं हो उसके मजीद हो, ये मजीद एक एहसान है अल्लाह ताला की तरफ से, इसे फ़ज़ल कहते हैं। सो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा एहसान है, जो जिसको चाहे वो दे। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, और मजीद देने वाला, मजीद ज़्यादा बरकत देने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला, उसकी इस्तेआत रखने वाला तो वही अल्लाह ही है। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एक जैसी हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब शुरू से बात करते हैं दोबारा। आपको जॉब पे जाना है, आप थोड़ी देर से उठे सुबह को, आप रेस लगा रहे हो या जल्दी कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं कोई और जल्दी उठा या नहीं उठा, आपको किसी और की फिक्र नहीं है, आपको अपनी फिक्र है, आप खुद मोटिवेटेड हो कि आपने क्लास पे पहले पहुंचना है। ठीक है, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जब उनको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए ना, उनको ये फिक्र नहीं होती और कोई क्या कर रहा है, और कोई सो रहा है, और कोई उठा हुआ है, और कोई जल्दी कर रहा है, और कोई आहिस्ता कर रहा है, मुझे जल्दी करनी है, उसको और किसी की, वो कोई किसी और को देख नहीं रहा होता, वो खुद ही से मोटिवेट हुआ होता है। और ऐसे लोग, उनकी उन सब में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि उनके सामने एक गोल होता है और वो उस गोल पे, उस हदफ पे वो इतने फोकस हो जाते हैं, इतने मुर्तकिज़ हो जाते हैं कि बाकी लोग उनको नज़र नहीं आते, उनको कोई कंपैरिज़न नहीं करना होता एक दूसरे की, इस ये क्या कर रहा है, ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको, बस अपना गोल नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप दौड़ लगाने की बात करते हो तो दौड़ लगाने में कुछ लोग तो हैं जिनको बस गोल नज़र आ रहा है, लेकिन और लोग हैं जो कहते हैं यार ये तो आगे निकल गया, मुझे भी आगे निकलना चाहिए, बाकी सारे तेज गाड़ी चला रहे हैं, मैं आहिस्ता चला रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी तेज करनी चाहिए, ठीक है ना। सारे उस दुकान पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे भी वहां जाके करना चाहिए। सारी लाइनें इस रेस्टोरेंट में लगी हुई हैं, वो रेस्टोरेंट खाली है, मुझे भी वहां जाके खाना चाहिए। यानी आप बाकियों को देख के आपने भी दौड़ में शिरकत कर ली, ठीक है। तो नफ्सियाती तौर पे एक शख्स है जो बाकियों को देख के थोड़ा इंस्पायर हो गया या उनको कॉपी कर रहा है, और दूसरा जो है वो अपने तौर से उसने इनिशिएटिव लिया। तो कौन सी आयत में अपनी तौर से इनिशिएटिव ज्यादा है? पहली आयत, क्योंकि वो खुद से क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है, खुद से जल्दी कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात, आखिर की तरफ आते हैं, फिर दरमियान में आएंगे। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा जिनसे जल्दी करने को कहा है वो कैसी, किसके लिए वो जन्नत बनाई है? मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन। अब मैं सवाल, मुश्किल सवाल है, क्या तमाम मुसलमान मुत्तकीन हैं? ना, यानी ये तमाम मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही, मुसलमानों के ग्रोह में से एक सबसेट जिसे कहते हैं ना, एक उसकी कम नस्बत है, उनके बारे में बात हो रही है। अब तादाद इन लोगों की कम हो गई, ठीक है। अब इससे अगली आयत में इन मुत्तकीन के बारे में कुछ मजीद बातें बताई जाएंगी, ये कैसे मुत्तकीन है। कहा अल मुत्तकीन अल्लज़ीन युनफिकूना फिस्सर्रा वद्दर्रा, ऐसे मुत्तकीन जो खुलेआम, जो आसानी के वक्त पे और मुश्किल के वक्त पे खर्च करते हैं। यानी सिर्फ मुत्तकीन ही नहीं है, खर्च करने के मामले में, सखावत के मामले में, आसानी हो या मुश्किल हो, वो हाथ पीछे नहीं रोकते। अब ये इनकी तादाद बढ़ गई या कम हो गई? और मजीद कम हुई ना। फिर कहा वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और ना सिर्फ खर्च करते हैं हर हाल में, अपने गुस्से को पी भी जाते हैं, अपने गुस्से को उगल जाते हैं। तादाद कम हो गई या ज्यादा हो गई? और कम हो गई। और एक मजीद फिल्टर है, सही बात कह रही हूं, और एक फिल्टर लग गया, अल्काज़िमीन अल-ग़ैज़। फिर उसके बाद मजीद कहा अल-आफ़ीना अन-नास, और मोहब्बत से लोगों को माफ करते हैं। गुस्से को पी जाना एक बात है, किसी ने आपके साथ कुछ किया, गलती की, आप रेस्टोरेंट में थे, वेटर ने आपके ऊपर गलती से पानी गिरा दिया, इट्स ओके सर, सॉरी सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, गुस्सा तो आप पी गए, लेकिन शक्ल पे अभी भी अनोयंस है, शक्ल पे अभी भी कुछ एजिटेशन है। अलआफीना अन-नास है, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, देखो आप डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करो आप मेरे साथ बैठ के ये लंच मेरे साथ खा लो आप। यानी आपने सिर्फ गुस्सा नहीं पिया, आपने मोहब्बत से माफ़ भी किया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक मशहूर रिवायत है, कुछ कहते हैं हसन से मुतालिक है रज़ी अल्लाह अन्हु, कि उनका एक ग़ुलाम था, वो उनको पानी दे रहा था तो उसने जग गिरा दिया उनके पाँव के ऊपर, पाँव ज़ख्मी कर दिया। तो उसने ये आयत पढ़ ली वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पीने वाले, कुरान का हवाला है, कुरान बचाने के लिए है। तो उन्होंने कहा कदम तो गई थी, मैंने गुस्सा पी लिया। फिर उन्होंने कहा अगली आयत का हिस्सा उन्होंने पढ़ा, गुलाम ने कहते हैं वल्आफ़ीना अन-नास, और लोगों को जो मोहब्बत से माफ़ भी करते हैं, देखो चलो आफा तुक, तुझे माफ़ भी कर दिया। अब आयत का आखिरी हिस्सा है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वाले, बेहतरीन करने वालों से मोहब्बत करता है, जा तू आज़ाद हो गया। तो वो तीन, अब मुत्तकीन से बात शुरू हुई थी, वो पहले ही सारे मुसलमान नहीं हैं। अब मुत्तकीन में से ऐसे जो हर सूरत हाल में खर्च करते हैं कम हो गए, फिर उसके बाद गुस्सा भी पीते हैं और कम हो गए, फिर लोगों को मोहब्बत से माफ़ भी करते हैं और भी कम हो गए, और हर वक्त एहसान का मुजाहरा करते हैं और भी कम हो गए। तो ये वाली जो जन्नत है ना, ये बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के लोगों की है, जो खुद ही से जल्दी करते हैं, उनके अंदर खुद ही कोई आग लगी हुई है जिसको उनको ड्राइव करती है। ये खास लोगों के बारे में बात कही जा रही है, या आम के बारे में, अवाम के बारे में ये बात नहीं है, खवास के बारे में बात है, ठीक है। अभी आसमानों के बारे में आखिर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा तकाबुल कर लें दूसरी तरफ। शुरू में कहा था साबिकु, दूसरी आयत में दौड़ लगाओ, दौड़ लगाने वाले दूसरे को देख के करते हैं कि खुद से करते हैं? दूसरे को देख के करते हैं। तो ये इंसानियत की अक्सरियत नहीं है? उसने ये डिग्री की, मैं भी यही कर लूं, उसने ऐसे कपड़े पहने, मैं भी यही पहन लूं। यानी यही तो हमारी एक टेंडेंसी है कॉपी करने की, जिससे इतनी सारी मार्केटिंग चलती है, इतनी सारी एडवर्टाइजिंग चलती है, हम दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, दूसरे को देख के हम कहते हैं हम भी ये करना चाहते हैं। कितने करोड़ों लाखों अरबों बच्चे दुनिया में होंगे जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल खरीदने गए होंगे, यू नो कितनी खिड़कियां टूटी होंगी दुनिया में, राइट? क्योंकि हम देख के हम भी अब हमारे भी ख्वाब आ गए। ऐसा ही होता है ना,
1: سابقوا الى جنات من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والارض. بس یہاں کہا کس کے لیے جنت؟ یہ والی جنت متقین کے لیے نہیں، کہا ان ان سب کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ کم لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں؟
0: اس میں تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، کہا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو اس میں ہم تو ویسے بھی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ان لوگوں کی بھی ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ پر ایمان لائے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام پر ایمان لائے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، تمام رسول جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ان سب کو شامل کر دیا. تو دوسری آیت میں کم لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ کی؟ شروع سے سابقوں کے لفظ میں زیادہ کی طرف اشارہ، اور آخر میں جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. اچھا، ان میں مزید کوئی قید ڈالی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ان کو اپنا غصہ بھی پینا ہوگا، تقویٰ بھی دکھانا ہوگا، اور نمازیں بھی قائم کرنی ہوگی، اور کوئی مزید یہاں پہ شرطیں ڈالی ہیں کہ نہیں؟ نہیں ڈالی. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری جنت ہے نا، اس کا دروازہ کچھ زیادہ کشادہ کھلا ہوا ہے، لگ رہا ہے نا؟ اب اس کا جو دروازہ کشادہ کھلا ہوا ہے، اب آسمان کی طرف آتے ہیں، پھر ان آیات کو سمجھیں گے. پہلی آیت میں کتنے آسمانوں کا ذکر تھا؟ سات آسمان. آسان سا سوال ہے، سات آسمان زیادہ بڑے ہیں یا ایک؟ غلط، ایک بڑا ہے. اب سمجھاتا ہوں کیوں. عربی میں السما کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ آسمان اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. السما جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اوپر ہے. اوپر کے لیے لفظ کیا ہوگا؟ السما. جب آپ نے سات آسمان کہا تو اوپر میں سے صرف سات آسمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوپر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ السما. اچھا، اس میں قید ڈالنی ہو، ان میں سے کسی ایک آسمان کی بات کرنی ہو، ہم کہیں گے السماء الدنیا، سب سے نیچے والا آسمان. یعنی اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا پڑے گا. السماء السابعہ، ساتواں آسمان. السماء الثانیہ، دوسرا آسمان. السماء الثالثہ، تیسرا آسمان. لیکن اگر آپ کہیں صرف السماء، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ بھی اوپر ہے. اب یہ الفاظ جو کچھ بھی اوپر ہے، سب کچھ جو اوپر ہے، وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے یا سات آسمان زیادہ وسعت رکھتے ہیں؟ جو کچھ بھی، یعنی نیچے والی آیت میں، حدید والی آیت میں، اتنی ہر لفظ میں زیادہ سے زیادہ وسعت ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں بھی بات ہو گئی، تو اس کو تو آپ ایکویشن نہیں بنا سکتے، اس کو برابر نہیں کر سکتے جنت کے، کیونکہ اس کے مقابلے میں تو جنت بھی کچھ نہیں ہے. تو کیا عرض السماء، اس کی طرح سے کچھ، اگر تم سمجھ لو، برابر نہیں. کا عرض السماء والارض. اچھا، یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانیت پر زیادہ کس میں ہے؟ نچلی والی میں ہے نا. تو دیکھیں، نچلی والی میں ایک کلام کا اضافہ ہے جو پہلی آیت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے زیادہ ہے، جو جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ ہی ہے زیادہ دینے والا. سبحان اللہ. ایک تو بات ہو، میں نے ایک سکرین پر یہ آیت اور یہ آیت ایک دوسرے کے نیچے رکھ دی کہ ہم تقابل کر سکیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ نازل ہوئی تھی کیا؟ ایک آیت ایک کسی سال میں، ایک آیت کسی اور سال میں، ایک آیت جب صحابی قرات کر رہے ہیں تو وہ سورہ آل عمران کی قرات کر رہے ہیں، اس میں وہ آیت آ رہی ہے، ایک سورہ حدید کی قرات کر رہے ہیں تو اس میں وہ آیت آ رہی ہے. ذہن میں تو آئے گا اس طرح کی ایک آیت یاد آتی ہے، لیکن میں تو یہاں پر سکرین پہ دکھا کے ایک ایک لفظ کو کمپیئر کر کے، کیونکہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں،
1: ہمیں تو پڑھنا آتا ہے، ہمیں الفاظ دیکھنے آتے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کو لال کر دیا، اس کو کالا رکھ دیا، یہ میں کر سکتا ہوں. وہ لوگ کرتے تھے یہ چیزیں، ان کے لیے قرآن تو سنی ہوئی چیز تھی نا، لکھی ہوئی چیز تھوڑی تھی، سنی ہوئی چیز تھی. اس قسم کی باریک دقت، اتنا نازک کلام کہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک لفظ کا لحاظ رکھا گیا ہو، وہ بھی ایسے کلام میں جو لکھا ہوا نہیں پیش کیا گیا، بولا ہوا پیش کیا گیا ہے. انسان کی صلاحیت سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے. تھوڑا سا بھی تدبر اللہ تعالیٰ کے کلام پر انسان کر لینا، اس کو یہ بات واضح ہو جائے یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا، چننے کے لیے دو لفظ. سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے چننے کے لیے، عربی میں چننے کے لیے مختلف الفاظ ہیں، اختیار کرنا، اختارا یا اختارو، اختیار، اختیار کرنا بھی عربی کا لفظ ہے. استفا، اس کو بھی چننا کہتے ہیں. اجتبا، اس کو بھی چننا کہتے ہیں. عربی میں یہ تینوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی نا پہاڑی پر، طور پر، تو انہوں نے ان سے کہا تھا انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا، میں نے آپ کو چن لیا. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اختیار. اختیار، اختیار سے مراد ہے ایسی چیز چننا جس میں خیر ہو. اختیار خیر سے نکلا ہے، خیر کے معنی ہم سب جانتے ہیں. اختیار کیا ہے؟ ایسی چیز کو چننا جس میں خیر ہو. اس لفظ کا استعمال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک گلٹ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو میں تو پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہ کیا. ہو سکتا ہے ان کے دل میں کچھ گمان رہ گیا ہو، یا پھر بھی وہ سمجھتے ہو کہ اب میں ٹھیک ہے. کسی نے یہاں پر بھی آڈینس میں سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے ہر اللہ تعالیٰ السابقون السابقون کی بات کرتے ہیں، لیکن جس نے پیچھے کو غلطی کی ہو وہ تو پیچھے رہ گیا نا. اب وہ جتنا بھی اچھا کرے لیکن اس کے کھاتے میں کچھ نگیٹو تو ہے نا، تو وہ باقیوں کے ساتھ طرح آگے تو نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تسلی کسی اور بات کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی ہے؟ آپ کے اندر جو خیر ہے اس کی بنیاد پہ میں نے آپ کو چنا ہے. وہ انا اخترتک. لیکن ہم جو یہاں پر تقابل کریں گے وہ سورۃ الحج کی آخری آیات کے بارے میں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار کے لیے دو لفظ استعمال کیے ایک ہی رکوع کے اندر، دو مختلف الفاظ. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے، اذا اجتمع تفرق، اگر دو ایک جیسے معنی کے لفظ ایک ساتھ آ جائے نا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا فرق واضح کرنا ہوتا ہے، اس کے فرق کی تمیز کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں یا اہل ایمان ہیں، ایک ہی بات ہے. لیکن اگر مومن اور مسلم کو ایک ہی جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے. چننے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یصطفی. یصطفی، اسی سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ، ایک لقب استعمال کرتے ہیں، محمد المصطفیٰ. محمد المصطفیٰ، وہ اسی سے نکلا ہے، اصطفیٰ سے. تو یہ لفظ ہوا اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کی سلیکشن کی، ان کو چنا، ان کا اختیار کیا، فرشتوں میں سے بھی جیسے جبریل کا اختیار کیا گیا ہے علیہ السلام، اور جس طرح رسولوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے جا کر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بات کی، مسلمانوں کے بارے میں. کہتے ہیں وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں چنا ہے، اس نے تم سب کو چنا ہے. لیکن وہاں جب چننے کی بات کی تو یہ نہیں کہا ہوا اصطفاکم، کہا ہوا اجتباکم. وہ اجتبا کا لفظ ہے، ہم وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی استعمال کرتے ہیں، محمد المجتبا، المصطفیٰ والمجتبا، ہے نا. لیکن مجتبا کا لفظ اصل میں قرآن میں کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ہمارے لیے. ہم اصل میں مجتبا ہیں، ہم مجتبون ہیں اصل عربی کے اعتبار سے، ہمیں چنا گیا ہے. تو چننے کے لیے دو لفظ. اچھا، ہم ان کو جلدی سے سمجھتے ہیں، میں سب مثال کے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ میں سے کسی کو چاکلیٹ پسند ہے؟ اوکے، کون سی چاکلیٹ پسند ہے؟ سنیکرز، مائی کائنڈ آف پیپل. اینی بڈی ایلس؟ کٹ کیٹ؟ کٹ کیٹ، سنیکرز. کوئی زیادہ کریٹیویٹی آپ کے اندر نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے؟ مارس؟ یار کیا یار، تھابلرون، لنٹ، لنٹ، روشیئرز، باؤنٹی. اوکے، باؤنٹی از پیپر ان اٹ.
0: नो ओके आप दुकान पे जाते हो, आप अपनी बीवी के साथ दुकान पे गए, आपका दिल चाहता चॉकलेट खरीदने का, तो आपने स्निकर्स उठा ली। आपकी बीवी आपसे पूछती है, आपने स्निकर्स क्यों ली, किटकैट क्यों नहीं ली, ट्विक्स क्यों नहीं ली, टॉब्लरोन क्यों नहीं ली, थू क्यों नहीं ली, आपसे पूछ रही आपने स्निकर्स क्यों ली, बताएं मुझे क्यों ली, तो आप कहें फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक मुझे स्निकर्स पसंद है। आपने चुना है ना उसको, स्निकर्स का इख्तियार किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, सोशल फैक्टर्स हैं उसके, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसकी, पसंद है मेरी बस पसंद है, या वो सस्ती है, वो कह रहे हैं सस्ती है। अगर आप आगे आप एक और स्टोर पे गए, अब मैं इकोनॉमी की बात निकालता हूँ, एक ही कीमत की सारी कमीजें लगी हुई हैं, एक ही स्टाइल की है, एक ही सिलाई की है, और आपने नीली वाली चुन ली, आपकी बीवी आपसे कहती है आपने नीली वाली क्यों चुनी, सब्ज वाली क्यों नहीं चुनी, सफेद वाली क्यों नहीं चुनी, पीली वाली क्यों नहीं चुनी, आपने नीली वाली क्यों चुनी, तो आप कहो माफ करो मुझे लेने दो यार, क्योंकि आपने किस बुनियाद पर चुनी है, पसंद है मेरी पसंद है मेरी पसंद है। कुछ कुछ इख्तियार ऐसा होता है जिसमें आपकी पसंद होती है, बस मेरी मर्जी, मैं जो खाऊं, मैं जो ऑर्डर करूं, ये क्यों ऑर्डर किया, ये क्यों खा रहे हो, ये क्यों पहना हो, क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है, ऐसी मर्जी को कहते हैं इस्तीफा। इस्तीफा निकला है सफवा से, सफवा कहते हैं खालिस चीज को, इससे उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं साफ, साफ शफाफ जो हम कहते हैं ना, ये असल में सफा से है, अरबी की अरबी का लफ्ज है, और इसका नाम इसका इस लफ्ज का मायना है पाकीजा और पाक, ऐसा इख्तियार जो पाक और खालिस किसका है, मेरा है, इसमें किसी का बाहर से अमल दखल नहीं है, उसे कहते हैं इस्तीफा। अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, आप में से किन कौन हैं जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रिस्क में इजाफा करे, फर्ज करें कि आपकी जॉब है आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी जॉब है आपने इंटरव्यू लेना है, अकाउंटेंट की जॉब खुली है, 5-6 लोग आए हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और आपने इंटरव्यू लेना है जी, ठीक है, पहला आया उसने इंटरव्यू दिया फारिग किया उसे, दूसरा आया कि हम रब्ता करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा, फिर आपका बॉस आके आपसे कहता है तो क्या ख्याल है किस कैंडिडेट को लें, तो आप कहें वो तीसरा वाला सही था, तो फिर वो आपसे पूछता है क्यों, कहते हैं उसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, उसकी जेब में स्निकर्स थी। अगर आपने अकाउंटेंट को हायर करना है किस बुनियाद पे, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसने अगर आपने उसको कोई कॉम्पिटेंसी टेस्ट दिया है, कोई साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन की है, सारी चीज़ें देख के ही आपने हायर करना है ना, उसमें इस्तीफा तो नहीं चलेगा ना, कभी कभी ऐसा इख्तियार करना पड़ता है जिससे इख्तियार का यानी आपकी अपनी चॉइस का ताल्लुक नहीं होता, इम्तियाज का ताल्लुक होता है, जैसे स्टूडेंट्स पिक किए जाते हैं इम्तियाज की बुनियाद, खसूसियात होती हैं, कोई क्वालिफिकेशंस होती हैं, ऐसी सिलेक्शन को कहा जाता है इज्तिबा, जबू से निकला है, जबू कहते हैं अरबी में टैक्स कलेक्शन को, असल में खराज जो कलेक्ट किया जाता है ना, वो हर एक से नहीं किया जाता, जिस

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: अच्छा फिर उनसे तो कहा था सहरा में बच्चे को छोड़ आओ, उनसे तो कहा था आग में कूद जाओ, उनसे तो कहा था बच्चे को ज़िबा करो, मुझसे पता नहीं क्या कहेंगे अल्लाह, मुझसे पता नहीं क्या कहेंगे, क्या मुतालबा होगा मुझसे फिर। उनका तो हवाला दे दिया, कहा फ़ाक़ीमु सलाता वआतु ज़का वअतसिमु बिल्लाह, नमाज कायम रखना, नमाज कायम कर दो, ज़कात दो और अल्लाह को थामे रखो। हुआ मौलाकुम फ़निअमल मौला वनिअमल, वो तुम्हारा मौला है। आसानी की है कि मुश्किल की है? अल्लाह, इन दो अल्फाज में इस्तीफा और इज्तिबा,

0: और फिर मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं। रिश्तों में भी मैं यही करता हूँ, फाइनेंशियल चीज़ों में मैं यही करता हूँ, मैं वही कमिटमेंट करता हूँ जो मैं पूरी कर सकता हूँ, और जब तक मैं वो पूरी नहीं कर सकता मैं नहीं करता। और बताने की कोशिश करता हूँ कि ये, क्योंकि ये बात मैंने हुज़ूर पाक से सीखी कि अपने माल को उसका ऐब बता कर बेचो। तो अगर मैं ख़ुद को एक प्रोडक्ट या एक सर्विस समझता हूँ तो मैं हर बंदे को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी बहुत सारी वीकनेसेस बताता हूँ, ताकि बाद में कोई बंदा भी ये कहे ऐसे था वैसे था ये कह दिया था। ज़्यादातर वो सब आपकी अपनी बनाई हुई अजम्पशंस होती हैं, मैंने क्यों के हिसाब देना है। और रब कहता है कि बंदों के बीच में जब भी कोई मामला होगा तो तुमने वादा क्या किया है या तुमने क्या कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से होगा। वो गलत है या सही है वो दो बंदों पे डिपेंड करता है, या वो एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। रब इन मामलात में नहीं आता। तो आपका काम है कि आपने जितना बोला है उतना करने की कोशिश करें, जो चीज़ आपके पास है उतनी कमिटमेंट करें जो आप दे सकते हैं, ताकि आप रात को आराम से सो सकें। अपने खर्चे उतने रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और अपनी सेविंग्स को भी अपने पास रखें, बवक्त ज़रूरत काम आएगी। कहीं दुश्मनी में भी, दोस्ती में भी, मोहब्बत के रिश्तों में, किसी भी काम में एक मुअय्यन हद से आगे, एक लाइन है उससे आगे आपको नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद तकलीफ़ें, नुकसान और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जो लोग उस लाइन के अंदर आपसे कोई भी मामला रखना चाहते हैं आप उनके साथ रख सकते हैं, आज़ाद हैं आप, लेकिन उससे आगे जब आप जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ आपका जाएगा। और अगर उसमें सुकून चला जाता है तो दुनिया में इससे बड़ी और कोई बारगेनिंग नहीं। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी पाना चाहते हैं, और आप मर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, और आपकी सांस बंद हो रहे हैं, चाहे उसके बगैर आपको लगता है कि मैं आज ही मर जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ पाकर अगर आपको सुकून नहीं मिलता तो इट्स नॉट वर्थ इट। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ वर्थ नहीं करती जिसमें मेरा सुकून, मेरी नींद, और जो मैं अंदर से इंसान हूँ, जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं हूँ। मुझे अपना सच बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे अपनी औकात भी बड़ी अच्छी तरह पता है, और मुझे अपने गिफ्ट भी बड़ी अच्छी तरह पता है। मैं अगर अपने साथ ही नहीं रह पाऊँगा तो मैं किसी और इंसान के साथ, किसी भी दुनिया के पेडिस्टल के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी बड़े से बड़े सिंहासन पर भी मैं बैठ कर भी मैं खुश नहीं रहूँगा। तो मैंने सुकून की खातिर अपने आप को जान कर, बेसिक सी एक इक्वेशन को सामने रख कर, जितना मुझे इस दुनिया में रहना है उस हिसाब से मैं लोगों के साथ भी डील करता हूँ। मैं रिश्तों में भी ऐसा ही हूँ, मैं बिज़नेस में भी ऐसा ही हूँ, मैं मामलात में भी ऐसा ही हूँ। और अगर कोई मुझे तंग करता है, परेशान करता है, तो मैं उनको जाने देता हूँ और मैं उनकी ज़िंदगी से निकलता हूँ। मैं ये भी, मेरी इतनी भी औकात नहीं मैं किसी को ये कहूँ कि भाई मैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे समझ आ जाती है कि मैं इनके किसी फ़ायदे का नहीं हूँ, तो जब मैं उनके किसी फ़ायदे का नहीं हूँ या मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों उनको बॉदर करूँ। ये मेरा सोचने का तरीका है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और मैंने बनते बनते ये बनाया है। इस तरह मुझे नींद अच्छी आ जाती है, इस तरह मेरे काम अच्छे हो जाते हैं, और इस तरह मेरा ग्रैटिट्यूड का जो ग्राफ है ना मेरा, वो एक बैलेंस में रहता है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, और बहुत ज़्यादा मैं इस तरह कभी नेगेटिव भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा मेरी किसी ख्वाहिशात भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा तो मैं अपने पास इस दुनिया में और शायद कुछ ना कर सकूं। इसमें मेरी कमज़ोरियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, बहुत कुछ शामिल है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाता ज़िंदगी में, लेकिन सच यही है जो मैंने अभी आपको बताया। पता नहीं क्यों बताया मैंने आपको ये सारा कुछ, जेलस आई हैव नो आइडिया।
1: आपको पता होता है आपने क्यों बताया?
0: इसलिए कि शायद कोई ना कोई सुन रहा हो और कहीं ना कहीं पर रिलेट कर पाए और कंफर्टेबल हो जाए अपने अंदर, और इस दुनिया की रियलिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाए, और थोड़े में खुश रहना सीख ले, और जो मिला हुआ है उसकी शुक्रगुजारी कर सके, और जो नहीं मिल सकता वो नहीं मिल सकता वो किसी और से ले ले, कहीं और से ले ले, अपना बंदोबस्त कर ले। मेरे पास जो है मैं सिर्फ वही दे सकता हूँ। आप उसको अगर बहुत अच्छा ग्रेटफुल होकर लेंगे तो मैं शायद और दे दूँ, लेकिन अगर आप उसमें से कीड़े निकाल के, गलतियां निकाल के लोगे, तो फिर शायद मैं ये भी ना दे सकूं, क्योंकि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। और एक और बात, कोई बंदा ये समझता है कि मुझे इंसानों का एहसास नहीं है। मैंने बड़ी दुनिया देखी है अब तक, ठीक है, और मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, मर्दों से, औरतों से, ट्रांसजेंडर से, दुनिया के ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन के लोगों से मिला हूँ, हर कास्ट क्रीड कलर के लोगों से मैं मिला हूँ, घंटों मैंने लोगों से बातें की हैं, और मैंने जज किए बग़ैर लोगों को, मैं एक चीज़ करता हूँ या नहीं करता, मैं उस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ या नहीं, वो मेरा मसला है। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तमाम चीज़ों को समझने की भी मैंने कोशिश की है। مجھے انسان رب کے بعد انسان بہت فیسینیٹنگ چیز ہے میرے لیے. میرے لیے یہ دنیا اتنی فیسینیٹنگ نہیں ہے, لیکن میرے لیے رب بہت فیسینیٹنگ ہے جس نے یہ دنیا بنا دی. اور اس دنیا کے بیچ میں جو انسان ہے وہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, یہ میرے لیے بہت فیسینیٹنگ بات ہے. اور میں یہی اس کے احساس, اس کے جذبات, اس کی کیفیت, وہ جس فارم, جس فیز میں ہے, وہ یہ سب میرے لیے بڑی فیسینیٹنگ ہے. تو بچے, بڑے, بوڑھے, مرد, عورتیں, میرے ہر قسم کے لوگ میرے دوست ہیں, ہر ریلیجن کے لوگ میرے دوست ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دوستی میں کہ کون مرد ہے یا کون عورت ہے, یا میں لڑکی سے بات کر رہا ہوں یا بچے سے بات کر, بندے سے بات کر رہا ہوں. اور جب میں کبھی کبھی سزا بھی دینے پہ آتا ہوں تو مجھے نہیں یاد رہتا یہ مرد ہے یا عورت ہے, یا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ایک ہی حساب کتاب ہے, کیونکہ کچھ چیزیں بہت بیسکس ہیں اور میں بہت بیسک سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. باقی جو چیز میرے پاس, بہت لوگ جو سمجھتے ہیں میرے پاس ہے وہ ہے ہی نہیں. تو جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اسی لیے جن لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کے زیادہ جذبات بھڑکیلے یا پھڑکیلے ہیں, اس کی بھی بیلنس سے باہر ہر چیز کی سزا بھگتنی پڑے گی. کچھ سمجھ آیا سجیلا جی آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟
1: اللہ کا شکر.
0: آپ کو اللہ کا شکر اور ریڈیو آزاد کا تعاون ہے آپ کے ساتھ.
1: بالکل صحیح آزاد, اللہ واقعی پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہے, اور اس بیماری نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی. اٹ ہیز برنگ لاٹ آف گریٹیٹیوڈ انٹو مائی لائف, بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ.
0: اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے جینے کا. یہ جو کانسٹنٹ, وہ جو تھی نا آزاد تھاٹ, کانسٹنٹ سینس آف گریٹیٹیوڈ مے بی دا اونلی وے ٹو لیو اے گریٹفل اینڈ اے پروڈکٹیو لائف. دیر از نو ادر وے. ہم نے سب کر کے دیکھ لیے. صبح اٹھ کر جرابیں پہننے سے پہلے, کیونکہ ہمیں یا جراب پاؤں سے ٹھنڈ لگتی ہے یا سر سے, ٹھیک ہے, تو ہوڈی اور جرابیں پہننے سے پہلے جو ہے نا وہ شکر کر دینا بہت ضروری ہے کہ میرے پاس ہے کیا. مجھے آج کسی کو رپورٹ نہیں کرنی, مجھے آج کسی کو خوش نہیں کرنا, مجھے آج کسی کے سامنے کوئی بڑا آدمی بننے کی کوشش نہیں کرنی, ٹھیک ہے جی. مجھے آج کسی کی طرف ہاتھ کو نہیں دیکھنا کہ میں اپنے بلز دے پاؤں گا کہ نہیں, تھوڑی بہت سیونگ سے کام چلا لوں گا اور کچھ مہربان لوگ ہیں ان کی وجہ سے میری زندگی آسان ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کر لیں. اور شکر, اور کوئی طریقہ, کوئی اور راستہ نہیں ہے جی. اور بہت سارے لوگ بڑے گریٹفل ہیں, بہت سارے لوگ بہت گریٹفل ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے کسی ایسپیکٹ میں گریٹیٹیوڈ نظر نہیں آتا. بس دکھ صرف تکلیف ہی ہے. ہم لوگ رب کو جانتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں مانتے بھی ہیں, ان کی باتیں بھی سب کرتے ہیں ہم پوری, لیکن وہ ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا. اسی طرح گریٹیٹیوڈ بھی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. ہم اپنے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر کسی چیز میں نظر نہیں آتا, اور نہ ہی کبھی کوئی کہتا ہے آپ کے بارے میں. آپ کی پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہتے, آپ کے سامنے بھی نہیں کہتے, تو کون لوگ ہیں یہ سارے؟ اور دوسری طرف ہمیں دیکھیں, ہماری قسمت چیک کریں, تین تین چار چار گھنٹے لوگ اور ریڈیو پہ آ کے کیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, اور میں اگر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ میں ہوں. جس کو ماں باپ کہتے تھے نکما ہے, جھلنا سا ہے, یہ اس زندگی میں اس کا کیا ہوگا, اس کو کون سنبھالے گا, یہ کیا ہمیں سنبھالے گا, یہ بیچارہ. میں کہتا ہوں اچھا یہ میں ہوں.
1: ماشاءاللہ زیادہ تو یہ سچ ا بلیسنگ, آپ کی وجہ سے ہماری اتنی الٹے کام سیدھے ہو رہے ہیں.
0: ہمارے سیدھے الٹے اور میرے سیدھے الٹے ہو جاتے ہیں. میں کرنے نکلتا ہوں سیدھا کام لوگوں کی جذبات کی وجہ سے نا, ان کے احساسات کی وجہ سے, ان کے جو ہے نا چاہتوں کی وجہ سے میرا سیدھا کام پٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے, سیدھا سا ٹرانزیکشنل سا کام ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. اور اپیرنٹلی لوگ میرے گرویدہ بھی ہیں, میری عزت بھی کرتے ہیں, مجھ سے پیار بھی بڑا کرتے ہیں, میں کچھ لوگوں کے لیے کیوٹ بھی بہت ہوں, لیکن پھر میرے میں اتنے پرابلمس ہیں.
1: جب ہمارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں تو آپ کے کیسے الٹے ہو سکتے
0: ہیں؟ اس لیے کہ میرے کام جن انسانوں سے ہیں وہ الٹے کھڑے ہیں, سر کے بال کھڑے ہیں کمبخت سارے.
1: ویسے تو آزاد اللہ ہمارے بھی ایسے ہی سارے الٹے.
0: نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ, میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں نا, وہ بےچارے, ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے چیلنجڈ ہے. ایک آدمی اس کو کتنی دفعہ سمجھایا یار یہ کام نہ کر تیری مصیبت بن جاتی ہے, وہ وہی کام کرتا ہے بار بار. چار لوگ ہیں جن کو بتائیں گے, کچھ کو فائنینشیل بتاتے ہیں کہ یہ کام نہ کر, کچھ دنوں بعد بات نہیں کرتے, پتہ چلتا ہے اس نے پھر رہے کھوئے جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے کسی کام میں ڈال کے برباد کر دیے. اور کچھ دوسرے ہوتے ہیں, وہ ان کی پلفرج اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ نقصان اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 10 سال کی محنت کرنے کے بعد آج بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, ہر مہینے کماتے ہیں, ہر مہینے ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو جب مجبوری ہوگی, آپ کے دوست ہیں تو مانگیں گے کس سے, آپ کے پاس اتنے تو ہیں نہیں, तो भाई क्या करेंगे आप। इसी तरह जिन लोगों को हेल्थ के बारे में बताया जाता है, हर वो काम करते हैं जिनको मेंटल और फिजिकल हेल्थ के खिलाफ है काम। और मुझे कौन से लोग अच्छे लगते हैं, यकीन करें, जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अपनी, जो अपनी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर रहे होते हैं, वो लोग जिनके लिए ज़िंदगी में ना रिश्तों में मसाइल हुए, उनके घर में हुए, फैमिली में हुए, उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ अपनी एक ज़िंदगी, एक अल्टरनेट लाइफ चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अच्छे वक्त का और बेहतर लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में आने का, इसमें क्या बहुत बड़ी बात। और दुख तकलीफ परेशानी में जब होता है तो बात करके हंस भी देते हैं कभी कभी, और कभी कभी गुस्से में वो मुगल्लज़ात बकते हैं कि, और फिर मुझे सॉरी भी कहा, मैं हंसता रहता हूँ आगे से, कोई बात नहीं, निकालो गुस्सा, कोई मसला नहीं।
1: अजाद अजाद एक और क्वेश्चन मुझे आप
0: करें ना, आपने सवाल नहीं पूछे, बड़े दिन हो गए।
1: अल्लाह या अल्लाह तौबा,
0: वो सारी बातें मैं खुद से ही बता देता हूँ आप। हाँ
1: अजाद, फिक्र करने में और कंट्रोल में क्या फर्क है? बहुत दफा हम एक इंसान की फिक्र कर रहे होते हैं लेकिन उनको लग रहा होता है कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है?
0: तो सवाल आपका ये है कि कंसर्नड होने में या कंसर्न शो करने में और किसी आदमी को कंट्रोल करने में क्या फर्क है? कंसर्न ये होता है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि मुझे एक चीज़ की समझ है, जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है आप, तो अब आप कंसर्न है किसी आदमी की फाइनेंशियल हेल्थ आपके सामने खुली पड़ी है और ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बता रहा है कि वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, तो आप उस बंदे से उसके बारे में बात करते हैं, आप कंसर्न है उसके बारे में कि उसके मसाइल आगे पैदा होने शुरू हो जाएंगे और उससे जो भी उसका और आपका रिश्ता है इसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा बाद में, जब वो अगर आपसे मांगता है, अगर आपके पास नहीं है तो वो, या हेल्प करेंगे भी तो क्योंकि उसको मैनेजमेंट नहीं आती वो भी डूब जाएंगे। इसी एग्जाम्पल को उठा के किसी की इमोशनल वेलबींग के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, सोच समझ के फैसले करते हैं और आप किसी को जानते हैं या आपकी फैमिली में या लोग हैं या दोस्त हैं वो बार बार एक ही किस्म का फैसला करते हैं और गलत किए चले जा रहे हैं, तो आप कंसर्न हो जाते हैं कि अच्छा खासा इंसान है ज़ाया हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है, हर दफ़ा उनके पास कोई लॉजिक, इलॉजिकल लॉजिक और इस तरह के अनरीजनेबल किस्म के रीजंस हैं, और बजाय इसके कि वो देखें, सोचें, समझें, एक ही गलती बार बार किए चले जा रहे हैं तो आप कंसर्न हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे कहते हैं कि ये इसको ऐसे करो, नहीं करोगे ठीक है जी, तो फिर फलां फलां फलां कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसमें आप उनकी लाइफ को पहले कंसर्न हो रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल जो आपका नहीं बनता, ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप उनके साथ जो वो नहीं करना चाहते, तो फ्री विल के अंदर हैं वो, तो अगर आप कंट्रोल करने की उनको कोशिश करेंगे तो इसके फिर रेपरकशंस होंगे, इससे रिश्ता टूट सकता है, दोस्ती टूट सकती है, मामलात ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन वो इतना तो कर सकते हैं कि जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसमें ट्वीक करके उसमें कुछ अपना काम चला लें, और जिस चीज़ में वो ट्रबल्ड हैं या चैलेंज्ड हैं उसमें वो किसी और से एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें या किसी और से पूछ लें अगर आपकी बात नहीं सुनना चाहते। तो कंट्रोलिंग होने का मतलब ये आप उनको अपनी मर्ज़ी से उनकी ज़िंदगी चलवाना चाहते हैं। आप ज़बरदस्ती किसी आदमी को कहेंगे जी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो यू नो रिश्ता टूट जाएगा, तो वो तो अगर उनकी एक्सरसाइज की तरफ रुझान नहीं है या वो करना ही नहीं चाहते या उनकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ है ही नहीं, तो आप अब उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों को कंट्रोल करें तो एक हद के बाद वो आपे से बाहर हो जाते हैं, इस तरह इस इनको भी अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह स्मार्ट तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली ईजी भी एक रास्ता होता है, उसमें यू नो सटल तरीके से आप उनको साइड पे लेके जाएं, उनको आप बताएं कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये होगा, इससे आपका फलां फलां प्रॉब्लम्स होते चले जाएंगे, आपको ये करना है, वरना वो दूसरे बंदे एग्जॉस्ट हो जाता है अगला बंदा कि बार बार मुझे ख्याल रखना है, बार बार मुझे इनके मामलात को सही करना है, और फिर इस तरह आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन कंट्रोल करना किसी बंदे को ये है कि आप कहे जी मैं आपके फाइनेंसेस कंट्रोल करना चाहता हूँ, आप मुझे सारा एक्सेस दे दें, वो नहीं कर सकते, उनकी अपनी नेचर है, उनके अपने पैसे, अपना कमाया हुआ काम है, वो आप कैसे कर सकते हैं? और कई लोग आपसे कह भी देते हैं कि आप करें, फिर आप करने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनकी नेचर के ख़िलाफ़ है। तो ये बेसिकली फ़र्क है दोनों के बीच में। तो कंसर्न होकर कम्युनिकेट करके बताते रहना साथ साथ, और जब वो कोई अच्छी चीज़ करें तो उस पर उनको खिराज तहसीन पेश करना, ठीक, अप्रिसिएशन करना उनकी, और जब वो ना हो तो उसकी फिर यू नो उनको उसके बारे में कहना कि भैया आप फिर ट्रैक से हट रहे हैं। बहुत दफ़ा करना पड़ता है लोगों को, तो कंसर्न होना लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में, दोस्तों के बारे में, एम्प्लॉइज़ के बारे में, यू नो जो जिस काम का आपको पता है उसमें ठीक है, लेकिन कंट्रोल करने से होगा कुछ नहीं। कई लोग खुद कंट्रोल देना चाहेंगे और बाद में आपके गले पड़ जाएंगे, कई लोग आप कंट्रोल करने जाएंगे तो आप अपने मामलात जो हैं वो आपके खटाई में पड़ जाएंगे और आगे बंदा सुनता नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, उसका माइंड सेट जो है वो उस किस्म का वाइड नहीं है, उसके वो गोल्स नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उससे वो काम कराना चाहते हैं, फिर तो काम नहीं होंगे, तो ये होता है, आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि दे विल गो बैक टू देयर नॉर्मल रेगुलर डेली बेसिस पे जो बिहेवियर है, हु दे आर, वो वापस चले जाएंगे उस बिहेवियर में, तो फिर कंट्रोल जो है वो उसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। कुछ तुक बनी जी?
1: हाँ जी आजाद, तो आजाद जब आप किसी के बारे में कंसर्न होते तो आप किस हद तक जाना चाहिए? नहीं, एक पॉइंट आता है, यू गेट फेड अप, आप फिर बस छोड़ देते हैं, तो वो कौन सा?
0: हर चीज में एक लाइन होती है, उस लाइन के नीचे आप रहें तो कंसर्न है, उस लाइन से आप ऊपर जाएं तो आप कंट्रोलिंग होने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो कोशिश करके वहां तक रखें चीज़ों को, जहां तक बात से बात की जा सकती है, स्पेस दी जा सकती है, उनको टाइम दिया जा सकता है, यहाँ तक। मेरा तो ख्याल है इस ज़माने में, जहाँ जिस ज़माने में हम रहते हैं, इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, कांटा लग जाता है और वो चलने फिरने के काबिल नहीं होता, तो उस वक्त वो जो भी बंदा बना होता है ना, मस्कीन सा, और वो खुद नहीं निकाल पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो उस वक्त जो भी उसको उस तकलीफ़ से निकालता है, तो वो बंदा उनके लिए मेहरबान, शफीक और गॉड सेंड होता है। कुछ अरसे के बाद आप खुद चलना फिरना शुरू होते हैं, तो आपके दिमाग में दोबारा से खन्नास समा जाता है, तो वो फिर कुछ भी आपको कह सकते हैं। तो उनकी असल बात हालत उस वक्त होती है जब वो सारी चीज़ें उनकी अपने काबू में होती हैं, अब वो क्या करते हैं आपके साथ ये पता चलता है उन लोगों का, तो विच इज़ परफेक्टली फाइन। और दूसरे जो और किस्म के इल्ज़ाम हैं जो आप कहते हैं, जो लोग लगाते रहते हैं, बाहर से जो इल्ज़ाम लगते हैं ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता बाहर के लोग, मर्द औरतें, बुज़ुर्ग लोग, और मैंने ज़्यादातर लोग क्या कहते रहते हैं, मैंने अपने बारे में ऐसे ऐसे इल्ज़ाम सुने कि मेरी 14 तबक रोशन हो गए, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कभी कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उसको डील करने का तरीका है। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा आपने ये बात किससे सुनी, किसने ये बात कही, क्यों कही, और ना ही मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी जुर्रत हो कि मुझसे पूछें कि हमने आपके बारे में सर ये बात सुनी है, ऐसा कोई भी नहीं। और अगर ऐसा है तो मैं उस बंदे को, वो मुझे जानता नहीं है इसलिए मुझसे उसने पूछ लिया, तो मैं एक आध दफ़ा प्यार से बता देता हूँ, लेकिन अगर उस बात को वो खींचने की दोबारा कोशिश करे तो वो मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात होती है। क्योंकि जितने भी बुराई को हवा देने वाले लोग होते हैं ना, एक आदमी ने किसी इनसिक्योर मोमेंट में आपको नुकसान देने के लिए या तकलीफ़ देने के लिए एक शोशा छोड़ दिया, उससे भी बुरे वो लोग होते हैं जो उस शोशे को पकड़ के, जिनकी इनसिक्योरिटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो उस शोले को हवा देते रहते हैं, क्योंकि अंदर से वो कहीं ना कहीं आपसे या तो जलते हैं या यू नो आपकी सक्सेस से या आपके नाम मुकाम से उनको तकलीफ होती है। वीक लोग जो होते हैं ना, वो बिल्कुल उस वक्त सामने आ जाते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जब उस बात को इस काबिल ही नहीं समझते कि आप इसके बारे में कुछ जुमला बोलें या किसी से कुछ पूछें या किसी को कॉल करें या किसी को कहें कि जी आपने क्यों कहा, मुझे सिर्फ पता लग जाता है ये बात कहाँ से निकली है, और वो बात की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी की वजह से हुई है, तो आई जस्ट लेट इट गो, मैं ज़रा ख़बरदार हो जाता हूँ उस बंदे या बंदी से। और अगर मुझे पता चले कि ये उन्होंने, उनके अंदर ये पैदाइशी कीड़ा है और इसी कीड़े के साथ वो इस जहान फ़ानी से कूच करेंगे, और ये खुदा ने उनको अजाब के तौर पे मुझे सामने रख के उनको अजाब दे दिया है, तो फिर मैं कुछ नहीं करता, मैं उन लोगों से पीछे हट जाता हूँ। फिर वो लोग रोएं, तड़पें, मरें, नब्ज़ें काटें, माफ़ियाँ मांगें, सिफारिशें कराएं, कुछ भी करें, ऐसे बंदे की सिफारिश करने वाला बंदा अगर आ जाए तो मैं उस बंदे को भी साथ ही रगड़ देता हूँ उस बंदे के, क्योंकि अगर मैंने किसी को सजा दी है तो सोच समझ के दी है, उसको बहुत सारे चांसेस मैं पहले से दे चुका हूँ, और अगर उसकी सिफारिश करने कोई आ जाए तो फिर वो, चाहे अपने ज़माने में कोई बड़ा अफसर होता था तो वो उस बंदे के साथ सजा में उसको मैं शामिल कर लेता था जो उससे बड़ा होता था, हमसे तो बड़ा नहीं हो सकता ज़ाहिर बात है, जिसकी वजह से हम उसको सजा दे सकते हैं। और ऐसा अगर घर में कोई बंदा पैदा हो जाए और जो कहे कि जी इसकी ये है वो, वीक लोग नॉर्मली ऐसी हरकतें करते हैं, जिनका जिन्होंने अपनी कोई जगह नहीं बनाई होती, तो वो थोड़ी देर के लिए किसी की आसानी और मेहरबानी के लिए वो सिस्टम को बर्बाद करते हैं। और कभी भी अगर मैंने किसी आदमी की इज़्ज़त करते हुए आज तक कभी किसी बंदे को माफ़ किया, तो फिर मुझे आगे पता चला कि मैं गलत था और मुझको ये नहीं करना चाहिए था, चाहे वो कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, बुज़ुर्ग हो, बड़ा हो, छोटा हो, क्योंकि उनकी इतनी इनसाइट नहीं होती, और उसको थोड़ी देर के वीक मोमेंट के लिए वो उस बंदे से जिसने आज मिस्टेक की है वो आगे जाके फिर ब्लंडर करता है, वो घर को, फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, ऑर्गेनाइजेशन को और माहौल को बर्बाद करने में वो बंदा सबसे नुमाया और टॉप के ऊपर होता है। तो इसके लिए मुझे फिर अपने आप पे मुझे दुख होता है कि मुझे कमज़ोर किस्म के लोग जो हैं उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, तो इसीलिए अब वो काम भी ख़त्म हो गया, तो इसीलिए ऐसा कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं।
1: तो ज़्यादा इल्ज़ाम और तोहमत में फ़र्क है कि एक ही चीज़ है?
0: देखें, इल्ज़ाम कैटेगरी की बात है, आपसे लोअर कैटेगरी में कोई बंदा कुछ भी उठ के किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन तोहमत जो होती है किसी इंसान के ऊपर लगाना, उसके उस पर रब ने बहुत सख्त ताज़ीर लगाई हुई है, वो उसके उसके बड़े सख्त इम्प्लिकेशंस हैं इस जहान में भी और उस जहान में भी। तोहमत ज़्यादातर इंसान के कैरेक्टर पर लगाई जाती है, जब आपके पास और किसी बंद नीच लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जब भी उनके पास और कोई चीज़ नहीं होती अपने डिफेंस में या आपके ख़िलाफ़, उस वक्त वो लोग नीच होने की वजह से जो भी उनकी परवरिश में कमी रह जाती है, जो भी उनके खून ख़ानदान में कमी रह जाती है, जो भी अपने ज़र्फ नीच इंसान और हैवानी हो हालत में होने की खातिर, या डेस्परेट जब वो हो जाते हैं किसी को नुकसान देने की खातिर, तो फिर वो किरदार के ऊपर तोहमत लगाते हैं। वो आपकी फैमिली से भी शुरू हो किया जा सकता है, आपके ऊपर डायरेक्टली भी बात की जा सकती है। ऐसे लोग मेरे ख़्याल से जिस दिन ऐसी किसी चीज़ में भी मुलव्वस होते हैं, मैंने जैसे मुझे पता चलता है, और वो चाहे मेरा उनसे कोई भी रिश्ता हो, मैं उसी वक्त इस दुनिया में आखिरत तक उन लोगों से रिश्ता ख़त्म कर लेता। और इसका एक मकसद है, सारी ज़िंदगी कब तक इनसे लड़ते रहेंगे, कब तक आप अपनी गुड एनर्जी को इन बैड एनर्जी पे ज़ाया करते रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे, समझाते रहेंगे। दुनिया में और इतने खूबसूरत खूबसूरत रब ने रिश्ते बनाए जो डिज़र्व करते हैं, जिनसे आप कुछ सीखेंगे, जो आपसे कुछ सीखेंगे, जिनमें से एक एनवायरनमेंट पैदा होगा, उसमें इस किस्म के लोग जो हैवानी हालत में। और एक और बात जो मुझे बहुत पसंद है किसी इंसान की, जिसने कहा था कि नेवर फाइट विद द पिग्स बिकॉज यू विल गेट डर्टी एंड द पिग्स लव इट, आई डोंट वॉन्ट टू गिव देम अ चांस कि जिसमें वो इन्जॉय करें और हम गंदे हो जाएं। तो इसीलिए कोई चीज़ें रब से हमने सीखा है, कोई एब्सोल्यूट डोंट है, वो नहीं करना है, जिसने किया है उसकी वहीं से सज़ा है, चाहे उसके बदले कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे उसकी कोई भी सज़ा या कोई भी उसकी कीमत हो, फिर आपको उठानी पड़ती है। लेकिन ऐसे बंदे को माफ़ नहीं किया जाएगा, ज़रूरी नहीं आप उस बंदे को कोई यू नो आपने कोई नुकसान, कुछ नहीं करना, आपने अपनी ज़ात की ब्लेसिंग निकालनी। देखें कभी कभी ना, अगर आपने किसी इंसान को सज़ा देनी है ना और आपको उसने बड़ी तकलीफ़ दी है, तो उससे लड़ने झगड़ने के बजाय और खामखा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाया करने के बजाय, कोई लोग इतने नीच हद तक यू नो गिर जाते हैं ज़िंदगी में दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए, तोहमतें लगाने पर और बहुत सारे ऐसे कामों पर ओछे हथकंडों पर उतर आते हैं, उनकी सिर्फ़ एक मौत है, इग्नोर करना, जैसे वो थे ही नहीं, वो आपके लिए उस दिन मर जाते। अगर कहीं मिलते मिलाते कुछ भी और होता है, वो कोई बंदा कहेगा जी अगर सलाम करते हैं तो ठीक, जवाब दे दीजिए, आप अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। शैतान की सबसे बड़ी सज़ा ये है, वो ये साबित करना चाहता है कि मैं मैटर करता हूँ। यही उसने रब को भी चैलेंज किया था कि मुझे छूट देकर देखो, फिर देखे मैं इन लोगों के साथ क्या करता हूँ, और ये तेरी ज़ात से मुनकर कर दूंगा मैं इनको। तो उसको कहा जा तू जो ने करना है कर ले, उसको सिर्फ आपने इग्नोर करना होता, बस उसकी सबसे, और दुनिया की भी बहुत बड़ी सज़ा आई है, क्योंकि दुनिया का एक ही फंडा है, इसको ये बताना है कि मैं मैटर करती हूँ। एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी गई है जो कि इतनी, जिसकी अंदर हमारी ख्वाहिशात बंद हैं, जिसमें हर चीज़ जो है वो रियल है, टच कर सकते हैं आप उसके फ़ायदे नुकसान सब चीज़ें आप, लेकिन ये वक्ती है, थोड़े से वक्त के लिए, लेकिन 3D बहुत रियल और ओरिजिनल है, और हर चीज़ जो है ना टेंजिबल इनटेंजिबल सब कुछ आप इसी दुनिया में आपके साथ हो जाता है। इसने ये साबित करना है कि ये मैटर करती है, इसके पीछे आप भागेंगे तो ये भगा भगा मारेगी आपको। और मैंने कभी इससे इसके पीछे भागते बंदे को सांस लेता नहीं देखा, हमेशा तकलीफ़ में और परेशानी में देखा। इससे मुँह एक वक्त समझ आती है, मुँह दूसरी तरफ करें, दूसरी तरफ भागने की कोशिश करें, ये आपके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि इसने हर सूरत मनवाना है आपसे कि मैं मैटर करती हूँ। फिर जितनी ज़िंदगी है और जितने मामलात आपने रखने हैं, उस हिसाब से इसके साथ रख लीजिए। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

फरिश्ते हैं चाहे औलिया अल्लाह हैं, वो सब भी अल्लाह ही के बनाए हुए, वो अल्लाह के शरीक नहीं है, अल्लाह के मुकाबिल नहीं है और अल्लाह के मोहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सब अल्लाह के मोहताज। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, और रब होने के बावजूद वो क्या है? अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान, इसमें भी आप देखिए अल आ रहा है और रहमान आ रहा है, तो अल का क्या मतलब होता है? खास। और रहमान बहुत रहम करने वाला, और रहमान का लफ्ज़ किससे है? रा हा मीम से। रहमत का लफ्ज़ उर्दू में भी आप जानते हैं, बोलते रहते हैं। रहमत अल्लाह सुबहानु ताला की खास सिफत है। सिफत, सिफत क्या होता है? वस्फ क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी अल्लाह की क्वालिटी है। वरब्बुकल गनीयु विर्रहमा, और तेरा रब गनी है रहमत वाला है, रहमत उसकी सिफत है। और रहमान का लफ्ज जो है ये पालान के वजन पर है, रहमान पालान। अरबी जबान में जो लफ्ज फालान के वजन पर आते हैं, वजन का मतलब ये कि उतने ही हर्फ है वही बोलने का अंदाज है, तो उसमें बहुत वुसत होती। रहमान बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला, और रहीम, रहमान में भी रहमत की बात आ गई, दोबारा फिर क्यों रहीम की बात हुई? दोनों में माने के एतबार से थोड़ा सा फर्क है। रहमान में तो कसरत और वुसत और भर जाना, किसी चीज का ज्यादा होना और भर जाना, इसके लिए आता है फालान का वजन। अरबी में ये भी होता है जैसे कोई बहुत गुस्से में हो तो कहते हैं गजबान, यानी गुस्से से भरा हुआ और बहुत ज्यादा गुस्से में। इसी तरह अरबी में कहते हैं अच्छान, बहुत ज्यादा प्यासा। इसी तरह जवान, बहुत ज्यादा भूखा। तो फालान के वजन पर जो भी अरबी में लफ्स आते हैं उनमें ज्यादती भी है और किसी चीज का भरा हुआ होना भी है, कसरत। तो अल्लाह सुबहानु ताला की रहमत आम है। अल्लाह की रहमत दो तरह की है, एक आम है और एक खास है। तो रहमत आम जो है जो सबके ऊपर छाई हुई है, हर एक पे छाई हुई है दुनिया में, चाहे वो इंसान हो जिन हो हैवान हो। हत्ता के हदीस में आता है कि जंगली जानवर होते हैं ना जो और जानवरों का शिकार करते, वो अगर अपने बच्चे से हाथ उठा लेते हैं और उनको नहीं खा जाते तो ये भी अल्लाह ही की रहमत की वजह से, तो अल्लाह ने उनके दिलों में रहमत डाली। तो वो हर जगह पर उसकी रहमत है, यानी हर चीज को घेरा हुआ है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। तो ये सब के लिए, चाहे कोई मुसलमान हो काफिर हो मुशरिक हो मुनाफिक हो कोई अच्छा हो बुरा हो, लेकिन अल्लाह की उस पर रहमत आम है। इसी वजह से हम सब जी रहे हैं, इसी वजह से हम सब खा पी रहे हैं, और ये रब्बुल आलमीन के बाद इसलिए भी कि जो आलमीन का रब है जो हर चीज को ओन करता है वो इतना बड़ा है, वो अगर कोई गलती करे तो उसको एक सेकंड में सजा दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो उन लोगों को जो बाज़ूकात नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह सुबहानु ताला ही को बुरा भला कह रहे होते हैं और उसको जालिम बता रहे होते हैं और मालूम नहीं क्या कुछ उसके और उसके आयात और उसकी किताब और उसके खास बंदों के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको फौरी सजा नहीं देता। ये क्यों नहीं देता? क्या वो दे नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता? दे सकता है, लेकिन चूंकि वो रहमान है इसलिए वो उनको छोड़े रखता है और उनका वो वक्त पूरा करने देता है। अब आप देखिए दुनिया में जब इंसानों के पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी आती है तो किस तरह बिहेव करने लगते हैं, आप इसको बताएगा किस तरह बिहेव करते? अथॉरिटी के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं ना, किसी के पास थोड़ी होती, किसी के पास उससे ज्यादा, किसी के पास बहुत ही ज्यादा। माँ के पास अथॉरिटी, सारा दिन बच्चों को डांट डपट करती रहती। और दुनिया में आप देखें अथॉरिटी की मिसालें, मसलन दुनिया में मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें हर तरह के हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड है कोई उससे ऊपर है, कुछ ऑपरेशन एंड प्राइड। तो जिसके पास जितनी अथॉरिटी आती जाती है ना उसका गुरूर और उसका तकब्बुर
उतना ही

0: चला जाता है, और फिर वो समझता है उसे कोई पूछने वाला नहीं, वो जिस पे जितना चाहे जुल्म ढाए, जो मर्जी करे, ऐसा होता है ना। और बाज़ औक़ात वो ये नहीं देखते कि किसको तकलीफ होगी और किसको आराम होगा, और किसके साथ जुल्म होगा और किसके साथ इंसाफ होगा, वो जो चाहे करते हैं। लेकिन अल्लाह सुबहानु ताला ऐसा नहीं करता। आप देखें कि जिन लोगों के पास ताकत और कुव्वत होती है, जब उन्हें पता चलता है कि फलां हमारे खिलाफ है, तो वो क्या करते हैं, फौरन पकड़ने की करते हैं। लेकिन अल्लाह सुबहानु ताला के खिलाफ कितने लोग हैं, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो अल्लाह को मानते ही नहीं, या उसके साथ शिर्क करते हैं, या उसका हक नहीं देते, या उसकी इताअत नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद वो क्या कर रहा है, उनको खाने पीने दे रहा है या नहीं, फायदा उठाने दे रहा है, हंसने दे रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं दुनिया पर, अपनी मर्जियां मनमानियां कर रहे हैं। ये क्यों है, इसलिए कि वो रहमान है। लेकिन इस सब की एक लिमिट और हद है, तो उसकी अब एक और किस्म की रहमत है, और वो है खास, स्पेशल, खास रहमत। और उसके लिए यहाँ लफ्ज़ आया है अर्रहीम, जो फ़ईल के वजन पर है। और रहीम का मतलब होता है बार बार और मुसलसल रहमत करना, हमेशा रहमत करना। और ये हमेशा की रहमत फिर उसके सिर्फ फरमा बरदार बंदों के लिए होगी। अल्लाह सुबहानु ताला की रहमत के 100 हिस्से, जिसमें से एक सिर्फ दुनिया में है और 99 क़यामत के दिन। लेकिन ये 99 उनके लिए अब रह जाएंगे जो उस पर ईमान लाते, जो उसको मानते, जो उसकी इताअत करते, लेकिन फिर गलतियां करते, तो वो अपनी रहमत के साथ उनको माफ़ करेगा। और बावजूद इसके कि उनके अंदर गलतियां होंगी, फिर भी उनको माफ़ करके उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये होता है अर्रहीम। तो क्या फ़र्क है दोनों में, दोनों के अंदर आप देखें रूट एक ही है, राहा मीम एक ही है ना। क्या क्या बातें पता चली, नंबर एक कि रहमत अल्लाह की सिफत, नंबर दो रहमत की दो किस्में, रहमत खास और रहमत आम, नंबर तीन रहमत के 100 हिस्से, एक दुनिया में 99 आखिरत, नंबर चार उसकी रहमत दुनिया में सबके लिए आम है, लेकिन क़यामत के दिन किसके लिए खास होगी, ईमान वालों के लिए। तो अर्रहीम वो मुसलसल रहम करता रहेगा आखिर तक, किस पर, ईमान वालों पर। अल्लाह की तारीफ क्यों, क्योंकि वो मालिक कायनात होने के बावजूद बेहद मेहरबान है। समझ आ गई रहमान रहीम की। अब आप बताइए, नंबर एक रहमत अल्लाह की सिफत, रहमत की दो किस्में कौन कौन सी, खास और आम, 100 हिस्से, एक दुनिया में और 99 आखिरत। फिर दुनिया में उसकी रहमत सब के लिए, फ़ईल के वजन पर, फ़ाइन या लाम फ़ईल, जैसे करीम। आई नो के इट्स कबल अज वक्त, टू अर्ली कि इस तरह की बातें मैं आपसे करूं, लेकिन बात यह है कि इसके बगैर फिर वो गौर व फिक्र हो नहीं सकता। और इतने लफ्ज़ आपको आते भी हैं, मसलन करीम आता है, सबको मालूम है ना करीम लफ्ज़, अजीम, कोई और लफ्ज़ बताइए, फ़ईल के वजन पर। आप पढ़ते हैं शायरी, ओके, शेर जब पढ़ते हैं तो उसके आखिर में क्या होता है, राइम होती है ना, वजन होता है ना, वजन, बस वही वजन है ये शेर का वजन। शेर कब बनता है, जब उसके आखिरी लफ्ज़ एक जैसे होते हैं। लेकिन उर्दू में आप देखिए वो बस ऐसे तुक्का बंदी से एक एक जैसे लफ्ज़ लगा लेते हैं, उनके मीनिंग में वो सिमिलैरिटी नहीं होती। अरबी में जब वजन आता है तो मीनिंग की सिमिलैरिटी भी आती है। अब इसमें आप देखिए कि जैसे रहीम की तरह अगर अजीम है, करीम है, हकीम है, अजीज है, लतीफ है, कितनी सिफात है अल्लाह सुबहानु ताला की, वो सब इसी के ऊपर है। और जब इस वजन पे कोई चीज आती है तो उसमें तसलसल का माना आ जाता है, हमेशा मुसलसल लुत्फ आता है यानी ऐसे पढ़ने में। अब जैसे अल्लाह की सिफत करीम है, करम करने वाला है, यानी एक दफा किया और फिर भूल गए, क्या है उसमें तसलसल, किसी चीज में हमेशगी होना अच्छी बात है या नहीं, अच्छी बात है ना। मसलन इंसानों के अंदर सिफात होती है, इंसानों की क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, कुछ क्वालिटीज होती हैं सिर्फ टाइमली, थोड़ी देर के लिए, कंटिन्यूटी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती, अच्छा, कभी स्माइल किए कहीं तो कर लिया और घर जाके मूड ऑफ कर लिया, कोई तसलसल नहीं। हा? इसी तरह और अच्छी अच्छी सफात, कहीं तो बड़े नरमी से बात करें। और थोड़ी देर के बाद फिरौन बन गए, तसलसल नहीं है ना, कहीं नीचे गिरे कहीं ऊपर चढ़ गए, और कभी तो खूब काम किया और कभी कुछ भी ना किया, कोई तसलसल नहीं। एक दिन खूब खा लिया, अगले दिन कुछ भी ना खाया, कोई तसलसल नहीं, कोई हमेशगी नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? ये नक्स है, ऐब है, और ये बंदों में है, अल्लाह में नहीं है। अल्लाह इन सारे ऐबों से पाक है, अल्लाह सारे ऐबों से पाक है। समझ आ गई? जो हम कहते हैं ना मुस्तकिल मिजाज होना, वो क्या होता है? कुछ लोग बहुत मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जो काम शुरू करते हैं पूरा करके दम लेते हैं। और जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं, जिनको आप सक्सेसफुल पीपल कहते हैं, प्रोफेशनल, उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, उनके दर्जे की, कि जो शुरू करते हैं मुकम्मल करते, अधूरा नहीं छोड़ते, थोड़ा थोड़ा करते हैं मुसलसल करते हैं, लॉन्ग टर्म काम करते हैं। और उसके बरक्स नाकाम लोगों की सिफत क्या होती? वो जो एक रेस की कहानी पढ़ते हैं बचपन से, उसमें भी असल में तो स्टेडफास्टनेस की बात है ना, कि कछुआ जो था वो चलता रहा, खा वो थोड़ा थोड़ा चलता रहा, और खरगोश जो था वो छलांगे लगा के सो गया। हालांकि खरगोश का छलांगे लगाना बड़ा दिल खुश करता है, मगर कामयाबी किसको हुई? कछुए को। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, जैसे अब कुरान पाक आपने शुरू किया ना, तो ये नहीं कि एक दो दिन तो बहुत जज्बे जोश से आना, उसके बाद बंद करके रख, नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा थोड़ा मगर कंप्लीट करना इंशाल्लाह। तो रहीम क्या आप समझ आ गया? रहम, मुसलसल, तसलसल के साथ एंड तक। अच्छा, रब के अंदर भी क्या है? ये सब अल्लाह की सिफात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कह दिया ना, तो मेन जो हमारा फोकस है वो अल्लाह पर है, और उसकी पहली सिफत है कि वो रब है, दूसरी सिफत है अर्रहमान है, तीसरी सिफत है रहीम है। अब अर्रहमान अर्रहीम है और रब है वो, तो हर एक के अंदर एक अलग ही क्वालिटी। रहमान में एक और चीज है, रहमान का लफ्ज भरते मुंह भर जाता है, रहमान बहुत कसरत का तस्वर आता है, लेकिन रहीम में उस तरह बहुत बड़ा होने का तो नहीं आता, मगर उसमें कंटिन्यूटी क्या आता है, तो उसकी हर शान निराली। मालिक यौमिद्दीन, मालिक, सोचिए मालिक कौन होता है? आप आमतौर पर लफ्ज पढ़ते हैं मालिक, मलिक, मुल्क, ये लफ्ज जाने पहचाने ना सबको। सबा किरात का लफ्ज आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना, तो सबा किरात में से एक किरात में इसको मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ा गया। वो गलत नहीं पढ़ते, वो एक्चुअली एक और किरात पढ़ते हैं, एक सदर दर स्टाइल ऑफ रीडिंग कुरान। तो मालिक भी होता है और मलिक भी होता है सिफत अल्लाह की, लेकिन थोड़ा सा बीच में फर्क। मालिक का लफ्ज जो है मीम लाम काफ से है, मुल्क, मुल्क किसको कहते हैं? मुल्क कंट्री के लिए आता है, हुकूमत के लिए भी आता है। मुलुकियत कभी सुना है लफ्ज? खिलाफत और मुलुकियत, निज़ाम हुकूमत है, मलिक होता है, किंग होता है। तो मलिक का यमलिक का माना होता है किसी चीज पे काबू पाना। तो जो मलिक होता है, बादशाह होता है, वो क्या करता है? बाजुकात काबू होता है उसका और बाजुकात नहीं होता। तो जो मालिक होता है पूरा इख्तियार और अथॉरिटी रखता है, कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसकी अथॉरिटी होती, ओन्स, इख्तियार भी होता है उसका। लेकिन मलिक जो है उसमें ओनरशिप तो होती है मगर इख्तियार जरूरी नहीं। मालिक में ओनरशिप भी है और इख्तियार भी है, अथॉरिटी भी है, लेकिन मलिक में ओनरशिप तो है लेकिन अथॉरिटी नहीं। फर्क क्या है? कोई शख्स किसी घर का मालिक है तो क्या होता है उसके पास? मैं इसकी मालिक हूँ, इस पेन की। जब मालिक हूँ तो मैं इसको ओन भी करती हूँ और मेरा इस पे इख्तियार भी है। क्या इख्तियार है? चाहूँ तो लिखूँ, चाहूँ तो बंद कर दूँ, चाहूँ तो फेंक दूँ, चाहे तो किसी को तोहफे में दे, जो मर्जी करूँ, ये इख्तियार है। मालिक, मालिक कौन होता है? जो मालिक भी होता है, ओन भी करता है और अथॉरिटी भी रखता है। लेकिन मलिक सिर्फ ओन करता है, अथॉरिटी हो भी सकती है और अथॉरिटी नहीं भी। अब आप देखें कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं अब भी कि जिनमें डेमोक्रेसी के अलावा वहां पर किंग या क्वीन का वजूद भी होता है। अब क्या क्वीन मालिक होती? मलिका होती। ठीक है, मालिक नहीं, मलिका, हर चीज पर उसका इख्तियार नहीं, उसकी मर्जी नहीं, हर चीज पर उसकी अथॉरिटी नहीं, हालांकि उसको एक सुप्रीम पोजीशन हासिल। तो अल्लाह सुबहान व तआला के लिए जब मालिक और मलिक दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें बात यह है कि मालिक के अंदर अगरचे इख्तियार और मिल्कियत दोनों हैं, मगर जो मलिक के अंदर वो एक ग्लैमर है वो मालिक में नहीं है। मसलन मालिक एक कलम का मालिक भी मालिक कहला सकता है, अल्लाह सुबहानु ताला तो फिर हर चीज का मालिक है, लेकिन मलिक जो है भले उसके हाथ में कुछ भी ना हो, मगर जो टाइटल है मलिक उसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो अल्लाह सुबहानु ताला के लिए मालिक और मलिक दोनों ही बोले जाते हैं। लेकिन यहां दुनिया की मिल्कियत की बात नहीं हो रही, यहां मालिक यौम अद्दीन, यौमुद्दीन से मुराद क्यामत का दिन है। यौम अरबी में कहते हैं दिन को, और अरबी का दिन कब शुरू होता है? जब चांद नजर आता है, एक दिन के मगरिब से अगले दिन की मगरिब तक, जब आप रोजा रखते हैं और जब आप ईद के लिए चांद देखते हैं, तो ये दिन होता है। बाकी हम लोगों का आमतौर पर दिन क्या होता है? सूरज निकलने से दिन शुरू होता है। और यहां पर लफ्ज आया है अद्दीन। अद्दीन का लफ्ज जो है ये दाना यदीन उसे है, जिसका माना होता है बदला देना। दैन का लफ्ज आपने पढ़ा क्या? दैन किसको कहते हैं? कर्ज को। और कर्ज चुकाना ही होता है, कर्ज अपना पैसा नहीं होता, क्या करना होता है? वापस करना होता है ना। ठीक, तो दाना यदीन दैन कहते हैं अरबी में बदला देना, किसी अमल की जजा या सजा देने को। दीन का लफ्ज जो है अरबी में जजा और अमल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और जजा किस चीज की होती है? सजा या जजा किस चीज की होती है? अमल की। ठीक है, तो दीन अमल का नाम भी है और बदले का नाम भी। ये जो दीन इस्लाम है ये किस चीज का नाम है? अमल का नाम। मुसलमान होना नाम का नहीं है, कुछ करने का नाम मुसलमान होना है। समझ आ रही है? नहीं आ रही, मुश्किल लग रहा। अरबी जबान जो है इसको कहते हैं लुगतुल अज़दाद। ये खूबी सिर्फ अरबी में है कि उसी लफ्ज के अंदर ऑपोजिट मीनिंग भी आता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि क्या इस्तेमाल इसकी डेप्थ के लिए। मसलन शिरा का लफ्ज अरबी जबान में खरीदने और बेचने दोनों के लिए आता है। जन का लफ्ज गुमान और यकीन दोनों के लिए आता है। कहाँ क्या आता है कॉन्टेक्स्ट से फौरन पता चल जाता है। एक तरफ अरबी जबान में वुसत बहुत है और दूसरी तरफ एक ही लफ्ज के अंदर दो ऑपोजिट मीनिंग भी आते हैं। तो दीन का लफ्ज अमल और जजा दोनों के लिए आता है। अब आप देखिए कि यहां पर कहा जा रहा है मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। और बदले का दिन कौन सा है? क्यामत। इसका मतलब है वो अमल का दिन नहीं है। क्लियर? उस दिन जो लोग सजा पाएंगे वो रोएंगे पीटेंगे और कहेंगे या अल्लाह एक दफा वापस भेजाऊं, आज हमको समझ आ गई, अब हम कुछ करेंगे। हमसे बताया जाएगा बस अब तो वापस जा ही नहीं सकते। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे इस बात का पता चला, और मैं आपसे भी कहूंगी कि बच्चों को कभी बच्चा ना समझे, उनके साथ शेयर करते रहें, जो भी आप सीखे उनके साथ बातें किया करें। बहुत छोटी थी तो मेरे वालिद ने मुझे बताया कि वक्त ना जाया किया करो, वक्त इस्तेमाल किया करो, क्योंकि दुनिया में तो हम एक एक लम्हे में जो करेंगे वो सब जमा होता जाएगा और कल उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा। लेकिन कल अगर तुम कहोगी कि मैं अब कुछ करूँ तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो कब्र में जब इंसान जाता है तो हजार साल भी रहे तो चाहे हजार दफा रोज सुभान अल्लाह कहे तब भी उसका कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही करना है। तो ये वक्त बहुत कीमती। और फिर वो वाक्य भी बताया कि किस तरह जहन्नम वाले रोएंगे चिल्लाएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह हमें वापस भेज, हम करें। तो मैंने कहा अल्लाह ताला एक दफा तो वापस कर देना, शायद वो बदल जाए। मैं बहुत देर सोचती रही, फिर वापस नहीं जा सके, वापस नहीं, वापस नहीं, वापस नहीं, ये चीज चिपक गई मेरे दिमाग कि वापस नहीं, अमल नहीं, वहां काम नहीं कर सकते, सिर्फ बदला है। जो आज कर रहे हैं बस वही मिलेगा कल। लिहाजा हमें आज काम करना है। तो दीन का एक माना क्या है? अमल। अगर दीन को हम दुनिया के सेंस में लें तो मतलब क्या है? हमें क्या करना है? अमल करना है, काम करना है, काम काम काम। और कल बदला बदला बदला। दूसरा माना है दीन बदला। तो क्यामत का दिन यौम दीन मिला के पढ़िए। ठीक है, तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट में क्या पता चल रहा है कि यौम दीन से मुराद अमल का दिन नहीं है। कौन सा दिन है? बदले का दिन है, यानी क्यामत का दिन है। قیامت کے دن صرف بدلہ ہے، یہاں صرف معنی کیا جائے گا بدلے کا، ٹھیک ہے؟ بدلے کا دن، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، صرف وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورۃ غافر آیت 15 سے 17 تک، 15 to 17۔ گھر جا کے آیت نکال کے ترجمہ بھی لکھ لیجئے، اب اس وقت لمبا ہو جائے گا۔ سورۃ غافر 15 to 17۔ اب ایک بات اور ہے، سورۃ المؤمن کو غافر بھی بولتے ہیں، تو عربی مصحف میں غافر ملے گا اور اردو مصحف میں المؤمن ملے گا، ٹھیک؟ جیسے سورۃ فاتحہ کے نام ہے نا، ایسے سورتوں کے بھی نام۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق سے، یعنی قیامت کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل سامنے ہوں گے، لا یخفا علی اللہ منہم شیئن، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن ہم سب کس حال میں ہوں گے؟ کہ ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے، زبردست ہے۔ اليوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو۔ اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ دین کا معنی ہم یہاں بدلہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ عمل بھی معنی ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں اس آیت سے ہوتی کہ یہاں دین کا معنی جزا ہے، کیونکہ اليوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، ہر نفس کو جزا ملے گی، بما کسبت، جو بھی اس نے کام کیے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، حساب بہت جلدی کر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دن کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب پورا ہو جائے، اتنی تیزی سے حساب ہوگا۔ آج ہمارے تیز سے تیز ترین کمپیوٹر کتنی تیزی سے کیلکولیشنز کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو قیامت کے دن ہر ایک کے زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو کچھ اس نے کیا، سب کی کیلکولیشن ہو جائے گی، ہر چیز کو گن کے رکھ دیا جائے گا، کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا، کیا کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، کتنی کس کوالٹی کی تھی۔ اتنی تیز سپیڈ سے حساب ہوگا کہ پوری کی پوری مخلوق جو اول سے آخر تک ہے، ان سب کا آدھے دن میں اللہ حساب کر کے ختم کر دے گا۔ اوکے، جاؤ جہاں جہاں جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van, or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram, and Facebook.
6: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims. Kareem Abdul-Jabbar is a former professional basketball player who played 20 seasons in the NBA for the Milwaukee Bucks and LA Lakers. He is widely regarded as one of the greatest players of all time.
7: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
9: Every Monday from 10 to 11 a.m. Join the Urban Cube live with Shamiza Rashid. Creative conversations around arts, lifestyle and culture. Hear powerful voices, discover new visions and experience diverse cultural expressions. Meet inspiring charitable pioneers making a difference locally, nationally. The Urban Cube live, where culture, creativity and community come together. Every Monday, 10 till 11 a.m. The Urban Cube. Voices, visions, cultural expressions.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock. Allahu, Allahu, Allahu,
11: Allah, Allahu, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammad. المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. The brothers and sisters, welcome to a new show of تدبر القرآن with me, Sheikh Ahmed Al-Nashash. This show comes to you live from the studios of Inspire FM 105.1 in Luton, and you can listen to it by going to Assalam Radio in Peterborough. You can watch it by going to the Facebook page or the YouTube channel of Inspire FM. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We are still talking about Nuh alayhi salam in Surah Hud. So if you remember, brothers and sisters, last week I started talking about this, as Allah subhanahu wa ta'ala explained it in the surah. And I think it will be beneficial for all of us if I read all the ayahs that I spoke about it so far. And we'll continue from there, inshallah. So the story starts from ayah 25. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin. And indeed, we sent Nuh to his people And he said, I have come to you as a plain warner. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. That you worship none but Allah, surely I fear for you the torment of a painful day. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. The chiefs who disbelieved among his people said, we see you but a man like ourselves, nor do we see any follow you but the meanest among us, and they too followed you without thinking. And we do not see in you any merit above us. In fact, we think you are liars. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. He said, O my people, tell me, if I have a clear proof from my Lord, and the mercy prophethood has come to me from him, but that mercy has been obscured from your sight, shall we compel you to accept it? Islamic monotheism, when you have a strong hatred for it. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. And oh my people, I ask of you no wealth for it. My reward is from none but Allah. I'm not going to drive away those who have believed. Surely they are going to meet their Lord, but I see that you are a people that are ignorant. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. And oh my people, who will help me against Allah if I drove them away? Will you not then give a thought? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. And I do not say to you that with me are the treasures of Allah, nor that I know the ghaib unseen, nor do I say I am an angel. And I do not say of those whom your eyes look down upon that Allah will not bestow any good on them. Allah knows what is in their inner slaves as regards belief, etc. In that case, I should indeed be one of the zalimeen, wrongdoers, oppressors. Now, as you can see, brothers and sisters, here Allah subhanahu wa ta'ala is presenting to us, telling us the debate between Nuh alayhi salam and his people. So the people at the beginning, they said, firstly, you are Bashar, you are a human being, and we cannot see that you are better than us in anything. And also those who followed you, Aradulna this the meanest people, and we think that you are liars. And they asked him to drive them away. So if you'd like us, the chiefs, to follow you, then we cannot be with these poor people at the same time. And now in this ayah 31, Nuh alayhi salam continues presenting his case. And he mentioned here very important points that will convince these people that he's only a messenger and he's not seeking any favor from these people. He's not asking them for any money. And at the same time, he's not in a position that to give these people money to follow him. And this is, subhanAllah, Nuh alayhi salam said this thousands of years ago, and you'll find in new politics in many places that some politicians try to reach their positions, especially when to do with the elections, through money. So very poor people, certain type of people, they just give them some food, some money, and then they vote for them. Even there is a president promised the people that he will give them $5,000 if he wins or his party. So compare now between all these politics these days and what Nuh alayhi salam said. The first said, وَلَا أَقُلْ لَكُمْ عَدِي خَزَيْنَ اللَّهِ. So I'm not saying to you that with me are the treasures of Allah. And the point here, brothers and sisters, is to tell them that I don't want anyone to follow me thinking that if they are with me, this means that I will give them now thousands of pounds or dollars or any currency at that time. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. And to prove that he's a human being, he said, I don't know the unseen. I cannot tell you what will happen tomorrow. If I tell you something might happen tomorrow, then only this will be through the wahi, that Allah subhanahu wa ta'ala told me this. And this is what we believe as Muslims, that no prophet knows al-ghayb. Muhammad alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to say this in the Holy Quran. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. So I don't know anything to do with the unseen. So anyone pretends that they know al-ghayb, they are liars. Because unfortunately, there are poor Muslims, especially when they are in need or if they lost something, they go to some of these people, some of them even pretending that they are scholars or has knowledge, and give them money, asking them, oh, if they lost something, could you find it for us? And, can you tell me about this marriage, what you are expecting of this marriage and all of these things? But all of these, ghaib, no one knows about it except Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَقُلُ إِنِّي مَلَكٌ. And one of the questions or the requests of the mushrikeen all the time that we need a malak, we need an angel. So I'm not an angel. I don't know the unseen. I don't have the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, then he mentioned something about the followers. وَلَا أَقُلْ الَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَيُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خَيْرٌ. I don't say to those that you look down at them that Allah will not give them anything, because in these materialistic measures, they think these people, they are in this dunya, they don't have enough or they have nothing, then what they will have in akhirah? This is something to do with Allah, nothing to do with me, nothing to do with you even. So I am respecting these people for one reason. I respect them because they are following Allah. And this is a principle that we have to apply all the time, brothers and sisters. And there's a hadith that the Nabi alayhi salatu wasalam was sitting with the Sahaba radhiyallahu ta'ala alayhim, and the man passed. And he said, what do you think of this? They said, this person, he's a good person, and if he asks for the hand of any girl, will accept his proposal. If he asks us for anything, we'll give. And even if he's a leader, we'll follow him. Then he also didn't say anything. Then another person passed. And this, what do you think of this? They said, this is a poor person. If he asks for the hand of any girl, will not accept his proposal. Even if he's in charge, will not listen to him. Yeah, in this circle, the answer was that the first person, high rank, the second person, low rank. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, after he listened to their argument, by Allah, the second one, the poor, is better than that person in nearly 100 degrees. So it is not how a person looks. It is not how much money he has, or how many, or how much wealth, how many children, what is the status of that person. All this doesn't count. What counts is what you how you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. This is what counts. Anything else doesn't mean anything. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Allah knows what in their hearts. And if I ignore these people, if I say to them, move, I don't want to see you anymore, then I will be among those who are oppressors, wrongdoers. Now these people, the people of Noah, the chiefs, they don't like this answer. And they didn't try to reject it in a kind way, in a convincing way. What they said? قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. They said, O Nuh, you have disputed with us, and much have you prolonged the dispute with us. Now bring upon us what you threaten us with, if you are of the truth. So they don't have a case. Now, what they say? Okay, you argued with us, you made this long debate. So you are saying, if we don't believe, we'll be punished. Okay, bring the punishment. And really, brothers and sisters, this is one of the strangest answers that the people, they are, or they put in the debate. Oh, we don't want to listen, bring us the punishment. But if you have just doubts that a punishment is coming, so why are you asking for the punishment? The one who has a brain will ask for the guidance. Not if you are truthful, then bring us the punishment. Okay. Now the argument is, either Nuh alayhi salam truthful, he's a true messenger, or if he's a liar, there isn't no between. Either he's a liar or he's telling the truth. There isn't any third option. So, if he's a liar and all these promises that he's saying is false, fake, so what's the point saying to him, oh, if you are truthful, then bring the punishment? There's no point, because he's a liar. And why are you asking him this question? And if he's truthful, and you ask him, bring us the punishment, and they say, okay, the punishment is coming, then you'll find yourself punished. Then you are losers. In both cases, you are losers. So what is the right way to do? What is the right decision to follow? And if you follow, you are the winner. Now, Nuh alayhi salam, he confirmed in the next ayah that he is not the one who will bring the punishment. The one who has the full authority of the punishment is Allah.
12: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين.
11: He said, only Allah will bring it, the punishment on you, if he wills, and then you will escape not. That's it. As simple as that. The one who has the authority of the punishment is Allah, not me. I am a messenger. My duty is فذكر إنما أنت مذكر. Remind, you are only a reminder. I am telling you what Allah subhanahu wa ta'ala is telling me. So, if Allah subhanahu wa ta'ala likes to destroy you, he will destroy you. If Allah subhanahu wa ta'ala likes to save you, he will save you. So nothing to do with me. So it's better to follow.
12: وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
11: And my advice will not profit you even if I wish to give you a good counsel. If Allah's will is to keep you astray, He is your Lord, and to Him you shall return. And here, Nuh alayhi salam is telling them that as a person, as a messenger, as a Nabi, He has no power on them. He cannot say to them, okay, I can now bring the azab, bring the punishment tomorrow. He cannot say that. The only one who can do that is Allah subhanahu wa ta'ala. And at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will decide how your end will be. Then he mentioned this beautiful end. Huwa Rabbukum. And here he used the word Rabb. And Rabb means Lord, means the one who look after you, who cares about you, who wish you the good all the time. And remember, you are going back to him. So part of his mercy, Allah subhanahu wa ta'ala, he sent Nuh to his people. Part of his mercy that Nuh explained to them the truth. Part of his mercy that he gave them opportunity to discuss, ask, debate. So all of this, part of Huwa Rabbukum. He created you. He sent a messenger to you. He listened to your argument. All your concerns being addressed. So admire this and follow Allah. And remember, it doesn't matter what you do in this dunya, you are going back to him. Wa ilayhi turja'u. أم يقولون افتران قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Or they, the pagans of Mecca, say, he, Muhammad صلى الله عليه وسلم, has fabricated the Quran. Say, if I have fabricated it upon me, be my crimes, but I am innocent of all those crimes which you commit. And this ayah, brothers and sisters, comes about Muhammad alayhi salatu wasalam in the middle of this debate and discussion between Nuh alayhi salam and his people. And it's important to mention this fact that all the debate, all the discussions that I am telling Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying to him about Nuh and his people is from Allah. I didn't fabricate any of these stories. If I fabricate anything, it's up to me. It's up to me. I will be the criminal. حاشاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. And وأنا بريء مما تجرمون. And I am innocent of all the crimes which you commit. So we'll continue inshallah after the break. Please keep tuning on Inspire FM 105.1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
14: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
15: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
16: Did you see that guy on TV?
17: What, that No Comment guy?
16: Yeah, he was sick. What was his name?
17: I think it was Atiq Malik.
16: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
18: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
16: Liberty Law, there when you need us most.
19: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
20: Looking for a school where your child can learn, grow and achieve? Visit Stockwood Park Academy, part of Advantage Schools, on Thursday, 8th of October from 4:30pm to 7:30pm. Rated good by Ofsted, we combine traditional values, high expectations and disruption-free learning from secondary school to sixth form. Meet our staff, explore our facilities and discover a future full of opportunity. Stockwood Park Academy. Excellence, responsibility, compassion.
21: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
22: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
23: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30. Allahu, Allahu, Allahu,
11: Allah, Allahu, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammad. المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. The brothers and sisters, welcome to a new show of تدبر القرآن with me, Sheikh Ahmed Al-Nashash. This show comes to you live from the studios of Inspire FM 105.1 in Luton, and you can listen to it by going to Assalam Radio in Peterborough. You can watch it by going to the Facebook page or the YouTube channel of Inspire FM. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We are still talking about Nuh alayhi salam in Surah Hud. So if you remember, brothers and sisters, last week I started talking about this, as Allah subhanahu wa ta'ala explained it in the surah. And I think it will be beneficial for all of us if I read all the ayahs that I spoke about it so far. So we'll continue from there, inshallah. So the story starts from ayah 25. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
12: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. And indeed we sent Nuh to his people and he said, I have come to you as a plain warner. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 1 o'clock।
2: अस्सलाम वालेकुम, यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM। We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world-famous Qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.
3: A'udhu billahi minash shaitan.